निरपो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच सगल गुणा के दाते स्वामी

जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी वडभागी हो जो अज बुधवार दे विशेष दीवान सजदे ने इस दीवान दी हाजरी भरदे हुए आप जी सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे थे। जिवें कि पिछले समय विच इस स्थान दी मर्यादा मुताबक हर बुधवार गुरु इतिहास दी विचार आप संगतां नूं सरवण कराई जांदी सी, गुरमुख प्यारियां ने अपराला कीता है, ओ इतिहास दीआं पोथियां प्राप्त करके अज तों फिर उस लड़ी नूं आरंभ कर लगे ने। आप जी जिवें भली प्रकार जाणू इतिहास एक उस जंजीर दी तरह जेड़ा साडे वर्तमान तो लैके सानू बीत चुके समय दे नाल जोड़दा है। भावां के गुरु घर दे अंदर साखियां दी परंपरा साखियां दी प्रथा गुरु अंगद साहिब जी दे वेले तो आरंभ हो गई। सतगुरु गुरु अंगद साहिब जी ने भाई बाले तो सरवण करके भाई पैड़े मोखे तो गुरदेव दियां साखियां अंकित कराईयां। उस तो बाद बाबे पिरतिये दी संतान विचों बाबा मेहरवान ने कुछ गुरु का इतिहास इकत्र कीता। फिर गुरु के सिख बेअंत ऐसे हुए जिन्हां ने गुरु के इतिहास नूं काव्य रूप विच भी लिखिया ते वार्तक रूप दे अंदर भी लिखिया, वख वख गुरु साहिबाना दे जीवन नूं बयान कीता। किसे ने गुरु हरगोबिंद साहिब दे जीवन नूं लिखिया कवि सोयन वर्गियां ने, ते उन्हां ने नाम लिख दिता गुरु बिलास पातशाह छेवीं, सारा गुरु हरगोबिंद साहिब दा जीवन। किसे ने पातशाह दसवें दा जीवन लिखिया गुरु बिलास पातशाह दसवीं, ये दो ग्रंथ ने। एक भाई सुखा सिंह दा लिखिया

होते परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन श्रवण कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैया विचों पटां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच श्रवण कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां, जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदार एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, ए बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी है। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिजक देण वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जिहड़ा पहरन नूं वस्त्र दिंदा है, खान नूं भोजन दिंदा है, तन ते पाण वास्ते सुंदर गहने लै के दिंदा है, ते इह खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इहनूं पुछया गया तूं क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इक्को उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ

असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पै ए भी उस करतार दी दित्ती दात है। ऐवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसे नू देण वाला नहीं। अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कहन लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि वह करतार वह निरंकार तेरे भागां विच जे होवे तू अपने भागां विच इत्थे नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर ले इथों तक आपने विचार की सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नू आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नू गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता पर जदों इतिहास नू पड़चोलने आ ते असलियत इह प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नू बयान कीता अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे ने। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नू अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तो पहला मनोबिरतियां एकाग्र करो सुरत गुरदेव दे चरना अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

साबिद तुम हर जानो आपे, खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे खम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले

जो गंगरी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे खब रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी हफ्तावारी दीवान विच सतगुरु दे पवित्र चरण स्पर्श करन वास्ते साहिबां दी प्यारी गोद विच इकत्र होए बैठे हो। जिवें आप जी नूं ए सब नूं जानकारी है कि 27 जून नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी बरसी सी, जिस नूं आपां अज सतगुरु दे घर अंदर मना रहे हां। आपने बड़े प्यार दे नाल कीर्तन भी सरवण कीता है और गुरमुख प्यारियां तों उस दृश्य नूं तवारीख दे उस पन्ने नूं सरवण कीता जदों महाराणी जिंद कौर अपने सपुत्र दे शीश ते केस ना देख के उसने सब कुछ सह लिया अपने उते, पर इनू ना सह सकी कि कलगी वाले दी मोर मेरे पुत्र दे सिर तो गुम हो जाए। आओ उस शेरे पंजाब दे जीवन दे समाचार तुहाडे नाल आप संगत नाल सांझे करने ने। मैं सिर्फ उन्हां दी जीवनी विचों पख उन्हां को आप नाल सांझा करना, समय अंदर रह के उस दे जीवन नूं तक के साडी साडे गुरु नाल बण आवे, उस दे जीवन नूं पढ़ के ओदी निर्माणता नूं तक के असी अपने अतीत वल अपने उन्हां बजुर्गां दे इतिहास तो जाणू हो सकीए जिन्हां दीआं बाहवां विच वी ताकत बड़ी है ते निम्रता दे वी पुंज सन। आओ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब मेहर करे आप किरपा करके विच वरते मेरा सतगुरु किरपा करके एकाग्रता बख्शिया जे जिन्ने भी आपां बैठे हैं, क्योंकि एकाग्रता तो बिना आनंद नहीं। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र इलाही गुरबाणी दा जदों आपां पाठ करने ते गुरमत दे सिद्धांत दी आपां जदों विचार करने आ ते सतगुरु ने बाणी अंदर दो पक्ष मनुख दे बयान कीते। मनुख दे की इस बनाई हुई सृष्टि दे हर वस्तु दे दो पक्ष दिते ने, जिथे मेरे सतगुरु ने बाणी विच अमृत दा वेरवा दिता है। अमृत दी समर्था की है, अमृत अंदरों पी के मनुख केड़ियां उस रूहानीत दीआं पिंगां नूं झूटदा है। उत्थे साहिब ने इस दे विपरीत जिहड़े विषय विकार ने इन्हां विच मनुख जदों डुब जांदा है ते उदो इहदा जीवन तबाह किवें हो जांदा है। अमृत दी चढ़दी कला ते वकारां विच गर्क हुंदे जीवन दोनां नूं बयान कीता है। सतगुरु ने एक पासे उस मनुख दी देही नूं इन्ना कु सलाया जड़ा नाम भी जुड़िया उन्हूं कह दिता ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान उस मनुख विच ते प्रभु विच कोई अंतर नहीं जेड़े नाम विच भिजे ने। ते दूजे पासे इस देही दी गल करदिया कह दिता, कहन लगे एक भगत भगवान जे प्राणी कह नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। सोचदे होगे भी आपां बरसी तां मना रहे हां पर गल बाणी दी जुद्दे पासे नहीं, मैं गल राज दी करनी।
साहब ने जिथे अमृत की गल की उथे वकार जेड़े जीवन नू तबाह करदे ने उन्हां दा जिक्र किया। जिथे साहब ने भिजी कोई अंदर दी ओ आत्मा जेड़ी एक मिक हो चुकी है ओदी वडियाई कीती, उथे मेरे गुरदेव ने रब तो टुटिया होया दे जीवन नू भी बयान किया। जिथे सतगुरु ने बाणी विच ए कह दिता जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे होवे तां सनमुख सिख कोई जियो रहे गुरनाले, उथे नाल ही कह दिता जे को गुरते वेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे, दोनों पक दे दिते। जिथे साहब ने कहा आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी, उथे नाल ए भी कह दिता सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। सनमुख दी गल कीती नाल बेमुख दे जीवन नूं भी दस दिता, सच्ची बाणी दी गल कीती नाल कच्ची बाणी दा वेरवा दे दिता, अमृत दी गल कीती नाल जहर दी गल कर दिती, रब नाल भिजे हुए संत दी गल कीती ते नाम तो टुटे हुए साकत दे जीवन नूं बयान कीता, ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी गल पढ़ी ओदे विचों राज दा संकल्प तकिया ते साहिब ने उस राज नूं परवान ना कीता जिस राज विच रब गुरु परमेश्वर भुल जाए ते मनुख जुल्म कर लग पै, ते जदों दूजा पख लिया ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने राज नूं परवान भी कीता। साहिब दी बाणी विचों कुछ प्रमाण ने, सतगुरु केड़े राज नूं परवान नहीं करदे, हजूर दा बचने ऐसो राज ना कीता काज जित नै तृप्ताए, केड़े राज नूं गुरु परवान नहीं करदा, राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नांदा पायन काओ रत पित कुत्ते ओ चट जाओ, इस राज नूं परवान नहीं कीता। केड़े राज नूं गुरुदेव ने परवान नहीं कीता, बाणी दे अंदर जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होत सवान, साहिब ने एहो जै राज नूं परवान नहीं कीता। पर एक गल चेते रखियो, जे आपां कहीए वी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी राज दी गल नहीं करदी, गुरु ग्रंथ साहिब दा पहला शब्द ही श्री राग दा एवे कहिंदे ने सुल्तान होवां मैं लश्कर, राज नूं प्रवान कीता है, कहिंदे ने हे मालक जे तू मैनूं बादशाह दे देने सुल्तान होवां मैं लश्कर, तख्त राखां पाऊं हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ, पर इन्ना राज लैके एक मेरे ते कृपा कर दे सुल्तान बना दे, फौज दे दे राज भाग दे दे, पर मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे ना।

वतन की गल बाबे रविदास ने भी की। कहन लगे मैं ता उस वतन दा वासी हां जिथे परजा उत्ते जुल्म नहीं हुंदा, जिथे परजा ते तशद्दुद नहीं किया जाता, जिथे हर एक नू गल करन दा पूरा अधिकार है, जिथे कोई मर्जी मनुख उस राज विच विचरे ओनू कोई नजर बंद करके जेल विच जंजीरां भी जकड़ के सट्टण वाला नहीं, उत्थे कदी किसे दे पुत्तां नू बेदोषियां नू कोह के खत्म नहीं किया जाता। केड़े राज दी गल कीती गुरु ग्रंथ साहिब ने? कह लगे एक ओह जा राज चाहिदा है जेड़ा बेगमपुरा शहर को ना हो। साहिब ने उत्थे जिक्र कीता दुख अंदो नहीं तै ठाओ, ना तस्वीज खिराद ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई उहां खैर सदा मेरे भाई। कह लगे प्यारे आबा दान सदा मशहूर, उहां गनी बसा मामूर, ते ओ राज की हो जाए ज्यो ज्यो सैल करे त्यों भावे महरम महल ना कोट कावे। उथे कोई रोकन वाला नहीं, राज एक हो जाए। बाबे फरीद वर्गा सूफी संत जेड़ा इन्ना बाणी विच भिजा नाम विच भिजा इथो तक कहिंदा है कि जे सजना रब नू पाणी ते किसे दे हिरदे नू दुखाई ना। बाबा जी दे बचन सी पढ़ने सबना मन मानक ठान मूल मचांगवा जौ तो प्रिया दी सिख हे आओ ना ठाए। कही दा किसे दे हिरदे नू दुखा ना। ते जिदन उस फरीद ने स्वतंत्रता दी आजादी दी गल कीती, राज दो तरह नाल कायम कीता जांदा है। एक ता ओ लोक जेड़े जुल्म ते तशद्दुद करके परजा नू गुलाम करदे ने ते उहना ते दिन रात जुल्म ढांदे ने, अपनी राज दी हवश पूरी करदे ने। ते एक ओ मरजीवड़े जेड़े अपनी अनख नू कायम कर ली ते रब ने जिंदगी दिती है स्वतंत्र गुजार ली संघर्ष करदे ने, राज ओ भी कायम करदे ने पर जुल्म ढाण ली नहीं, जुल्म नू रोकण वास्ते। मैं जिस राजे वल तुर रहा ओदे जीवन तो पहला बाणी विचो अर्ज करनी है। फरीद वर्गा महापुरुष कहिंदा है किसे दे हिरदे नू ढाण ना। ते जिदन स्वतंत्रता दी गल कीती उदन उस फकीर ने एक गल कह दी, रबा मनुखा देही अमोलक है बड़ी मुश्किल नाल मिलदी है, पर मैं एक तेनू कह दिया जे फरीद नू जिउंदे जी किसे दे दरवाजे दा गुलाम बना नहीं, किसे दे दरवाजे अगे झोली अड्डन लई मजबूर कर नहीं, ते मैं कहना ऐ खुदा किसे दी गुलामी कबूलन तो पहला मेरी जिंद नू मेरे शरीर तो स्वतंत्र कर दे, क्योंकि मैं किसे दे दरबार विच गुलामी दे दिन नहीं कर सकता। बाबे फरीद वर्गे महापुरुष ने बाणी विच कह दिता, फरीदा बार पराए बैसना साई मुझे ना दे, जे तू एवें रखसी जीओ शरीरो ले, मेरे शरीर विचो जिंद नू कढ ली। ते जिस महाराजे दा जिक्र आपा कर लगे हां मैं कोशिश करांगा ओदे जीवन विचो पंछी झात आपा निकलीए। गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबार विच आनंदपुर साहिब दी धरती ते एक मनुख आए। मैं साहिब दे दशमेश दे जीवन नाल इहदे जीवन नू आरंभ करना, इस खानदान दे जीवन नू। सतगुरु दे दरबार विच एक मनुख आया ते साहिब ने जदो अमृत दी दात दिती ते इस नौजवान ने खलो के कहा सी, दातिया अमृत दी दात मेनू भी दे। सिख विद्वान लिखदे ने कि उस मनुख दा नाम सी बुढ़ा मल, ते इन्हे हाथ जोड़ के कलगी वाले दे चरणा विच खलो अमृत दी जाचना कीती। ते जदो साहिब ने अमृत दी दात दिती ते इहदा नाम रखिया गया सी बुद्ध सिंह। गुरुदेव पिता तो अमृत दी दात लई नाम बुद्ध सिंह रखिया। बाबा प्रेम सिंह होती लिखदे ने इसने इन्ना कु जालमां नाल टक्कर लई, इहदे शरीर उत्ते 40 निशान सन गोलियां दे नेज़ियां दे करबाना दे तीरां दे। बुद्ध सिंह दे तन ते 40 निशान ने। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जिक्र करदा है इहदे तन ते 43 निशान ने। गल मुकदी की ओहदे तन ते 40 निशान ने, दुश्मनां नाल टक्कर लैंदिया सारा शरीर विन्निया पिया। सिख विद्वान कहिंदे ने बुद्ध सिंह दी इक घोड़ी सी जिहदा नाम देसा सी, इस करके इहदा नाम नाल ही इन्ना जुड़ गया सी। असवारी करन वाले दा ते असवारी दा नाम इन्ना कु एकमिक हो गया, इहनू देसा बुद्ध सिंह कहिण लग पए सन। देसा बुद्ध सिंह अपनी घोड़ी दे पिछ ते सिख विद्वाना मुताबक 50 वारी इहने जेलम ते चनाह नू आर पार कीता सी। बुद्ध सिंह इन्हें

जिन दिए सोचित ना आवही पशु हों कर जानी ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुग्धा जन्म भया परमगत नानक दिन की शरणा जिन तो नाही विषया परमगत नानक तिन की शरणा जिन तो नाही विषया परम सम्मान योग सहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों अज हफ्तावारी जो विशेष दीवान सज रहे ने इस दी हाजरी आप जी ने पढ़ी है। अमृत बचना दा कीर्तन गुरु सवारे असानू सरवण करा रहे सन और कीर्तन दा प्रकरण केवल एक सी मेरे लाल जीओ तेरा अंत न जाना तू जल सल मैयल पारपुर लेना इस ही केवल विषय ऊपर गुरमुखा ने कीर्तन कीता। आओ इसे नु ही आधार बना के आप जी नाल कुछ समा गुरमत विचारां दी सांझ पानी है। अपने फुरनिया नू अपने अंदर नू टिकाण दा यतन करिए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने टिक के जदों कीर्तन सरवण कीता ते पाईशन हुई हजूर दा ओ बचन आप नूं सांझा कर रहे सन। हे मेरे करते पुरख वाहिगुरु जी पहली गल अर्ज टीकरा तेरा किसी ने अंत नहीं पाया। दूसरा बचन पानी विच झाती मारना वा जल विच भी तू है थल विच भी तू है पुलाड़ विच भी तेरा अपना ही स्वरूप है ते हर एक दे अंदर तेरी अपनी जोत टिकी है। इस गल नूं आपां सारे चंगी तरह समझने हां कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने परमात्मा नूं किसे एक थां ते निश्चित नहीं केवल कीता कि इस थां ते परमात्मा रहिंदा है इस तों बाहर परमात्मा नहीं। ना किसे चार दीवारी नूं ना किसे मरी नूं ना किसे कबर नूं ना धरती दे एक टुकड़े नूं इह नहीं कहा कि परमात्मा केवल इत्थे रह रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने उस एक दी सर्व व्यापकता दा जिक्र कीता है। ओह एक है पर एक होण दे बावजूद भी ओह सर्व व्यापक है। गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचना ने उस सर्व व्यापक नूं बयान कर दिया है। ओदी जोत दा टिकाणा हर एक दे विच मनिया है। आपां ने सरवण भी कीता ते रोज असी ये बाबे नानक दे बचन पढ़ने हां कि सब में जोत जोत है सोए कि सारे विच ओदी अपनी जोत है तिस दा चानन सब में चानन होए ते उस जोत दा चानन सारियां दे विच है। मैं सिर्फ इस विषय से अर्थ करनी चाहना जे वो सर्व व्यापक है ओदी सारियां विच जोत मौजूद है।

गुरु अर्जुन विघ्न नके नाशक विघ्न नके नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी

मैं बार बार बेनती करना है, सिख इतिहास ने ऐसे नगीने पैदा किए सन जिन्हां नूं अज असी रोने है। मैं बेनती करा अज कोई जस्सा सिंह अलूवालिए पैदा होवे जिहदे अंदर कौम का दर्द होवे। रो विचार कर फिर सही, बहुत औखा हो जाना मैनूं खुद नूं सुणाउणा जदों मैं उहनां दा इतिहास पढ़ना है। जस्सा सिंह अज तेरी बहुत लोड़ है तेरी कौम नूं। जिहड़ा पंजवां फैसला किया गया वह पंजवां फैसला यह किया गया भी जिहड़े जितने भी सिख ने ओ जदों भी कदे किसे मुहिम ते जाण गुरु ग्रंथ साहिब दी गल होवे जां किसे बाहरी हमलावर नूं रोकना होवे उदों बिना किसे शर्त तो इकट्ठे होणगे। उदों कोई किसे अगे शर्त नहीं रखेगा भी मैं इन्ने हिस्सा रहना जां मैं आ करना जां मैं ओ करना, उहदे विच कोई शर्त नहीं होवेगी। बाहरले हमलावर लई सारे सिखां नूं इकजुट होना पवेगा। इह 1758 दा 31 अक्तूबर दा अमृतसर साहिब दे विच पैदा होया सरबत खालसे दे पंज फैसले ने। वक्त फिर गुजरिया, 1759 दा वक्त आ गया। बच्चों शायद थोड़ा जा औखा हो 1759 59 दा वक्त आ गया। मैं सिर्फ अहम अहम घटना तुहाडे नाल सांझियां करदे आ। उन्हां दिनां च इक बोर बहुत ज्यादा अहम घटना बाती जलंधर दे कुछ इलाके विच ते हुशियारपुर दे कुछ इलाके विच एक हिंदू इथे बहुत वड्डा हाकम सी, उहदा नाम सी बिशंबर दास ते उहदा साथी सी भूप चंद। इह दोवें जिहड़े चंगे हाकम सन ते चंगे अपने वल्लों विद्वान भी सन, मैं दूजे शब्दां विच कहां शास्त्र विद्या दे योद्धे सन। पर इन्हां दे मन अंदर एक भुख जाग पई भाई साढ़े कोल फौज बहुत है, साढ़े कोल ताकत बहुत है, तो किन्ना चंगा होवे जे असीं सिखां ते हमला करके समुचे पंजाब दी हाकमी आप सामभ लईए। सिख नूं ते किते इहनूं फुट ना मारदी, सिख नूं किते गदार ना मारदा, सिख नूं किते आपस विच ही मिलवर्तन बणिया रहिंदा ना। सच जाणिओ इहनूं रब तों बिना कोई गुरु तों बिना कोई हरा नहीं सी सकदा, पर इहनूं इहदी फुट मर गई। खैर उदों उन्होंने मन विच विचार बनाई भी किन्ना चंगा होवे जे किते असीं इस वक्त दी इह सारे पंजाब दी हाकमी लै लईए। इन्हां ने चरत सिंह, लहणा सिंह ते नाल गुरु का प्यारा एहो जस्सा सिंह अलूवालिया इतिहादिक सिखां दे उत्ते उस इलाके विच वंगार के एक जंग लड़ना शुरू कर दिता। ओ उड़मुड टांडा हुशियारपुर दे बिल्कुल लागे है, उड़मुड टांडे दे विच टक्कर होई, बड़ी भयानक टक्कर होई। उदों जदों टक्कर दे विच सारियां पासियां तों कतलेआम होई, गुरु के सिखां ने भी खूब आहू लाए, पर इन्हां विचों बिशंबर दास सी जिहड़ा ओह तीर कमान दा बड़ा धनी सी, बहुत धनी सी। उहने इक्को बारी इन्ने कु तीरां दी वाछड कीती पर एक बारी सिखां दे पैर उखेड़ के रख दिते। जस्सा सिंह अलूवालिया अगे आया ते उहने भी तीर अंदाजी दा चंगा वल सिखिया होया सी, उहने कुछ तीर चलाए, उहने जख्म भी होए, पर उहने इस गल ते काबू पा लिया। बिशंबर दास नूं उहने अगे होके मार दिता, बिशंबर दास मरिया ते भूप चंद अगे आ गया। जदों भूप चंद दे उत्ते हमले कीते ते भूप चंद भी अगे होके जस्सा सिंह इसे अलूवालिए दे सामने आ गया। उन्हें एक तलवार का भरमा बार किया, जस्सा सिंह लामे हो गया ते एदे घोड़े दे उत्ते लगे है, घोड़ा सख्त जख्मी हो गया, छाल मार के गुरु का सिख थले उतरिया। ते उसे वेले इन्हे भी अपनी तेग सांभी हुई सी ते एक वार किया, उस भूप चंद दे एक बांह कटी गई सजी ते नाल कुछ पेट विच जख्म हो गया, उत्थे ही वह अपनी जिंदगी दे सुहास त्याग गया। बाकी फौजां कुछ भज गई ते उस जड़े बाकी सन उन्हां विचों जड़े मुखी है जदों मर जाण ते बाकी दी कोई पाया नहीं रह जांदी। हुण देखो शायद दुनिया विच इहो जी उदाहरणां नहीं मिलदियां। जस्सा सिंह अलूवालिए ने सिखां नूं भेज के दो दुशाले मंगवाए, जो कीमती दुशाले मंगवाए, दोनों कीमती दुशाले मंगवा के उन्हां दोनों बिशंबर दास अते ओ भूप चंद दोनों दे उत्ते कफन पाए ते नाल एक बचन आखिया, कहन लगे सूरमियों तुसी